0: नहीं मान रहा हूँ।
1: ठीक है, तो मैं सारी रात यही रहूंगी। लोग मुझे उठाकर ले जाएंगे, तब आना। फिर मत कहना कि मैंने तुम्हें वार्निंग नहीं दी थी।
0: Get lost.
1: पक्का नहीं मान रहा?
0: हाँ हाँ नहीं मान रहा, जो करना कर ले, घड़ी घड़ी ड्रामा करती है
1: राजा। ठीक है तो तब